भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं।

शब्द स्वर ताल लय साहित्य एवं प्राण की धात्री साईं मां की अर्चना।

भगवान बाबा के कथनानुसार सर्व धर्मों का मूल मंत्र प्रेम प्रेम सच्चा प्रेम ही तो है। प्रभु प्राप्ति का इससे सुगम और सरल उपाय इस विश्व में और कुछ भी तो नहीं है।

ईर्षा, द्वेष, घृणा विश्व के समस्त अंधकार को मिटाने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही तो प्रभु साईं बन अवतरित हुए हैं।

0: से पग पग तू ही संभाले।
1: साई मींस मास्टर, अपना ले, मेक योर ओन। सो दैट इज द ब्यूटिफुल मीनिंग इनहेरेंट इन दिस लवली भजन, विच इज ए वेरी moving prayer to the Lord. Let us now proceed listening to the complete version of the bhajan as it is sung by the students of Bhagwan in the Vaishanthi Nilayam Mandir.

0: राम, ओ रामा, ओ लक्ष्मणा, कम एंड सेव मी फ्रॉम दिस मॉन्स्टर, सेव मी ओ रामा, सेव मी।
1: कटिंग थ्रू द स्काइज द पुष्पक विमान कैरिंग सीता फ्लू साउथवर्ड्स। Hearing Sita's cries, Jatayu, the monarch of eagles, took upon himself the noble task of rescuing Sita despite his old age. He flew across the chariot's path and attacked Ravana, causing him to bleed profusely.

एंड रामा रीच्ड लंका. रावणा रुइंड हिमसेल्फ एंड हिज डायनेस्टी बिकॉज ही कुड नॉट कंट्रोल हिज लस्ट पैशन एंड वाइल्ड डिजायर्स. रावणा एंड कुंभकर्णा रिप्रेजेंटेड द राजसिक एंड तामसिक गुणास रिस्पेक्टिवली एंड अल्टीमेटली वेर डिस्ट्रॉयड

नाव मेरे बंधप नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सिखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हां ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौनद मेरे, संपै हेत कला तो धन तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहां पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण विचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव संकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कह कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दसै दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचै हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सहिस्माना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कत न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मर्म कह जाने मोरा। रहाओ तोरव ना पाती पूजव ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजव सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कह कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दू बिसारी, सुन सहज मैं बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप वा पैरावो, जै नहीं आप तहां होए गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओ चेतना धरे। रहाओ जो निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरदन निर्धन कह जाए, दिया यादर लिया बुलाए। निर्धन सरदन दोनों पाई, प्रभ की कला ना मिटी जाई। कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद पूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बेकल पई नहीं बानी, भजले रेह मन सारंग पानी। अब ना भजस भजस का उपाई, आवै अंत ना भजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताओ ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवे जोनी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख बिचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुबिद कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसै बुधसार, तह तुम मिलकै करो विचार। ईतूत की सोजी पर कौन कर्म मेरा कर कर मरै। निज पद ऊपर लागो ध्यान, राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान। रहाओ मूल द्वारे बंदिया बंद, रावी ऊपर गए राख्या चंद। पश्चिम द्वारे सूरज तपै,
ਮੇਰ ਡੰਡ ਸਿਰੀ ਉੱਪਰ ਬਸੈ ਪਛਮ ਦੁਆਰੇ ਕੀ ਸਲਿਓੜ ਤੇ ਸਲੀ ਉੱਪਰ ਖਿੜਕੀ ਔਰ ਖਿੜਕੀ ਉੱਪਰ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਕਾਂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਸੋ ਮੁੱਲਾਂ ਜੋ ਮਨ ਸਿਉਂ ਲਰੈ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਸਿਉਂ ਜੁਰੈ ਕਾਲ ਪੁਰਖਾ ਮਰਦੈ ਮਾਨ ਤਿਸ ਮੁੱਲਾਂ ਕਹੋ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ।

0: तौ पार ब्रह्म का अंत न लहै। बावन कोट जा कैरो मावली, रावण सैना जहते शली, सहस कोट बहु कहत पुराण, दुर्योधन का मथिया मान, कंदरप कोट जा कह लवै न धरै, अंतर यंत्र मनसा हरै, कह कबीर सुन सारंग पान, देह अपै पद मांगो दान।
1: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
2: This is Radio Sai Global Harmony. You will now hear a selection of devotional songs

परफॉर्मेंस जित देखो उत्साही दैट इज सीन यूनिवर्स एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ साइंस।

शब्द स्वर ताल लय साहित्य एवं प्राण की धात्री साईं मां की अर्चना।

भगवान बाबा के कथन अनुसार सर्वधर्मों का मूल मंत्र प्रेम प्रेम सच्चा प्रेम ही तो है। प्रभु प्राप्ति का इससे सुगम और सरल उपाय इस विश्व में और कुछ भी तो नहीं है।

ईर्षा द्वेष घृणा विश्व के समस्त अंधकार को मिटाने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही तो प्रभु साईं बन अवतरित हुए हैं।